स्पेशल सैटरडे न्यू ईयर डे मान लेते हैं। हाय गाइस, ये ड्राइवर मेरे गर्लफ्रेंड जी हैं।

0: स्पेशल कैसेट है ये मूवी हम लोग के। हाय गाइस, ये ड्राइवर बन रहे हैं, ड्रॉप कर दो।
1: ओके, इन्होंने बने नंगे।